0: रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे। क्या भाई?
1: जी
0: मैंने पूछा के मुझसे मोहब्बत है क्या?

0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए। एक लम्हे, शमी भाई जी सुने हो गल?
1: जी
2: जी
0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, और मनाने में हमको जमाते लगे।
1: क्या बात है,
0: रोते रोते वो मुस्कुराने लगे। आगे कहना, रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, रात में हमको सोने की, कहना रात से सानू सोने की फुर्सत कितने है।
1: जी
0: रात में
2: जी

0: लगे।
1: क्या बात है।
0: रोते रोते हम मुस्कुराने लगे।
1: बात ही
0: अगे कहना जी ओ काल काल दी जिंदगी बारे पूछता भी कल नू की होएगा। कहना उनसे पूछा कल जिंदगी का पता, उनसे

सपने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने ओ मेरे साजना। ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आंखों में रहो जवान तुम। ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आंखों में रहो जवान तुम। मैं छाया बन के साथ चलूं, मैं छाया बन के साथ चलूं, मुझे ले चलो जहां तुम। हमने जो देखे सपने सच हो

जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। हम जन्म जन्म के साथी है, पूजा है प्रीत हमारी। इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, मैं हो गई तुम्हारी। हमने जो देखे सपने,

0: क्या बता क्या बता दी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब जनाब। ये जशन ही है, जिंदगी जशन ही होनी चाहिए आ, तो इनू एवं जीना चाहिए। जिम्मे माहिर जी लिख रहे हैं कि वाकई पॉजिटिव थिंकिंग है। बिल्कुल जी
1: जी सर, एक दो शेयर हो जाने जी।
0: जी जी जी
1: भी सुपनिया की उड़ान ही है जी, वो कोई आशिक है कोई कुछ है जी, कोई कुछ है जी।
0: आप अपने रोल कर रहे जी सारे जी।
1: कहिंदा जी हाथ उच्चिया अटारिया नू पाया नहीं हो जाना, हाथ उच

एक तेरी खातर सी छे सके सबंदी सारी, एक तेरी खातर सी छे सके सबंदी सारी, की लैण लोका तो साड़ी तू दुनिया मटियारी, असी बिना

मतलब दी दुनिया है आगे कैसे बुरे जमाने सुपने विच मिलने नीम अपनो समझन पुत बिगाने सुपने विच मिलने नीम अपनो समझन पुत।

सुपने विच मिलने नहीं मापिया नू समझन पुत बेगाने सुपने विच मिलने नहीं मापिया नू समझन पुत बेगाने।

0: जी
1: सुपना बन के जो जिंदगी दे वेड़े आई जिसनु अपनी कहिंदे सी ओ चीज पर आई सी सुपना बन के जो जिंदगी दे वेड़े आई सी जिसनु अपनी कहिंदे सी ओ चीज पर आई सी हुण चोली विच मेरे ता

0: अल्लाह सुनियो
1: जी।
0: तुर गई छल डू सिंगा जेड़ी देस पर आए उस कुड़ी दिया यादा ने जो गीतों गीत लिखाए तुर गई छड़ के जंडू सिंगा जेड़ी देस पर आए उस कुड़ी दिया यादा ने औलख तो गीत गवाए जिस दिया गल्ला रूप वांगू जिस दिया गल्ला सप वांगू सानू हर पल दस दिया उस कुड़ी दिया यादा साडे दिल विच वस दिया जिस दिया खुशियां गहरां दे वेड़े विच हस दिया।

ये हम संग है तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे दुख अब तेरे।

0: तांडव जी, बहुत
1: क्या
0: बहुत
1: बात है जी, क्या बताओ, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और बाकमाल पेशकारी हमेशा की तरह, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद जी, क्या बात है जी,
0: शुक्रिया जी, धन्यवाद जी,
1: जी
0: सारे सज्जना का जी, बहुत बहुत
1: जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, जिंदाबाद जा रही जनाब। सो बहुत मोहब्बत भेजी जा रही है दोस्तों वालों भी जीरा साहब लई, बहुत बहुत शुक्रिया। जगवंत खेड़ा जी नाल अपनी गलबात शायद हुण होण वाली है, ते मैं भी एक ना बचा के रखी, मैं जिवें दस्या सीगा दो लिख लिया भाई, अज तो बाली मतलब कहो ऐ मतलब कृपा जी होगी, कहते अटकी पई जी पहला, पर अज होगी। तो सुपने शायद विषय इहो जिहा होएगा जिहदे उत्ते आपां गल कह सकदे आ, सुन सकदे आ, ते ज्यादा तो ज्यादा गल्लां बातां हो सकदियां ने। असीं इधरों तारां जुड़न की कोशिश करदे आ जगवंत खेड़ा जी नाल, क्योंकि उन्हां दी कॉल्स काफी आ रही सन, मिस हो गईयां ने, तो कोशिश करदे आ। उन्हां दी आई गई जी, उधरों आ गई शायद, नहीं अजे बिजी ने, तो जदों तक फ्री हुंदे आ उदों तक भाई मैं अपनी सुना लैना, क्यों उह वी तां लिखी पई है, इसे ही प्रोग्राम दे लई विशेष तौर ते लिखी गई आ।
2: लिखो इस स्टेट दा लास्ट
1: पहला जिहड़ी आपां सांझी कीती आ उह सी कोरड़े दे विच, कोरड़ा छंद, ते जिहड़ी हुण इह जिहड़ी कोशिश कर रहे आं लिखण दी कोशिश कीती आ, इह कविता, तां ही मैं पहलां अगे पिछे कही वी इह कविता क्यों, पर इह कविता, कविता दे विच पेश कीती जा रही है सुपना टू। सुपना टू आ गया जी, तो इह च सुपना टू च हो रही है, ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਟੀ ਵਾਲੇ, ਬੁੱਢੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਟੀ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਤ ਆਉਣ ਸੁਪਨੇ, ਫੇਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ ਭਾਵੇਂ